सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है।

terremoto.

चल रही है, चलता है नहीं, जमा

शर्तें बनानी पड़ेंगी। आज ये कह रही है बनानी पड़ेंगी, फिर क्या कहेंगे महा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप मुझे व्यर्थ को जलाओ, समृद्ध फरिश्ता नजर है जिसको भी देखे क्योंकि बाप के सिकी लते बचे तो बाप ने आपको खास कहां कहां से चुन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अद्भुत।

0: Radio. Hjertelippe. Barndom. Kinsatsil. Garambia. Snedde velautredd. Aragarukoi. Vikkaranta pinejone. Ottortaima pipit.
1: शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फिशी।

that obscene.

सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वो डेट

सभी बच्चों को बेहद

ya bien. Get connected.

Salam. Our feast summer. जल्दी से जल्दी।

0: चलते फिरते ते ही अब मान नहीं बनना। यही बेहद का फेरा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा पड़ता। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव किनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उनके मन में, ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपन ने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा बाप को प्रतिज्ञा करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते। चारों और कितने बच्चे, हर एक बच्चा जानने में मेहनत नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चाहते

six semaines. Настя.

0: से क्या हो जाएगा? इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई आपसे

0: esa ano po karayon api dyan teo or apkoy isipyar ka at bawel kihamari tilbe papret
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए

It's

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी फिर भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ali, what's your goal?

अपने तरफ से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते सने संस्कार भी सने सुखी बने जाने। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? चार को नहीं देख,

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदले करे, बदले करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है। मंसूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 पास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े इस जन्म राज भाग्य में जीना है। तो मंसूर है, मंसूर है टीचर्स, तो बाप दादा यही देखने चाहते, समझा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके तो शब्द ही है, जो कामन शब्द है मुश्किल भी नहीं है और सभी यूज भी।

बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा। ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दूं, शब्द बोलते हो पहले को मेरा बाबा, पीछे मेरा ये रुमाल, मेरा सार।

0: Mira, shove the bola. Baba Samne. Me shove the bola. Atma Samne. Ye nature or natural banao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात, कंफ्यूज होने की क्या बात, बाप का साथ का सहयोग लो, अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते, हम मौजना नहीं, ठीक है ना, अभी भी मौजेंगे, नहीं मौजेंगे क्या, अभी नहीं मौज रहे ऐसे दिन, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना, कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए, सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ, सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा, सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज, उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूस नहीं करते, इसीलिए मौज जाते, संगम युग मौजों का युग है, या मौजने का युग है, या मौज का है, फिर मौज देखियो, अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मौजना शब्द निकाल लो, निकाल लिया, निकाल लिया, पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो, परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा, और कोई है क्या, नहीं, तो सदा मौज ही मौज, सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में, नहीं नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर, पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना, जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये अपना टाइटल याद करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी, आपके भाई है आपके बहने है दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण समझा क्या करना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चाहे

Wish you a good

Suerte.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकते।

dead Pacha. Yeah.

Yes.

0: Atlántico, que a Faraco de Me Ortega. Lequen. Faraquit na hojete. To ap sab.
1: चेंज कर देना मैं। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जहाँ सेवा में आ जाता है

Vanetti. Master Sarveshakti.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हे

0: दीवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी निश्चयों पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Liverpool Show.

0: शारद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरद पे आगे बढ़ो, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के साथियों सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हो जाए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुँचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत पढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहते हैं कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों के, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
2: बाबा याद प्यार देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

假装烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना say

Audio.

se apa?

0: होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रत भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लो, उसके गलती को सामने नहीं लो। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संकटोष में नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है जो होली का दिन है ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते। तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फ्रिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फ्रिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया साधारण से फ्रिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फ्रिश्ता ड्रेस पे। फ्रिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फ्रिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फ्रिश्ता बनने में। तो होली के ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल कर देते जाना, बोलना नहीं, फ्रिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फ्रिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई। सुना ये ट्रेल बोलना नहीं, वस्त्र बदली करना, दिल में जितना वार फ्रिश्ता ड्रेस में बैठ सको चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फ्रिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सेवना बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो, जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे, उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। अगर एक पॉइंट रही हुई है, गीता का भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

बनेंगे, प्रभुत्व वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ। अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। ये शब्द समाप्त हो, करके दिखाएंगे। क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे? विनाश के समय दे। इसकी विधि है, बहुत सहज विधि। अब मास्टर

Let it be known.

Sao hồ này.

0: 就这么甜，我懂，爱不是你，不然嘛呢？
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों के बाप दादा कुछ समय से लेके ready।

এবার পুরুষাটাতে চল রে নেই ওর রে What's up?

साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान

0: Kjell. Kissa med at Kjell Reinika. Forskjæret. De var forskjæret i Karlsund. Så der en forskjæret.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पापता

0: सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। अब दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट अटेंशन पूरा हो, ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाप हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: body name.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने आज

vecino.

क्रोध की स्मृति रखते हैं उस स्वरूप

इसकी और आवश्यकता क्यों का अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी सुनाने की कोशिश करती हो क्योंकि अनुभव

roupa. Se perdí me rastreo. Os que sua roupa.

0: होशियारत में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर लो तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो, दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उनों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ और कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है उसमें मिलके नमाज के लिए ऐसा फर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीखिक भी हो, अगर नहीं करते है तो क्यों? उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शांति का कारण

0: और लेना भी निकाल रही हूँ, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप तो खुश रहते।

Apa?

0: इसका टाइम फिक्स करना, क्योंकि अपने भाई बहन है ना तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता पड़ता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला बन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sick.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारियां क्या बननी है?

जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। लेकिन लेकिन वहां सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमटेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूं। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना, मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वोन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किट-किट वाले नहीं बनना। योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्भर

0: सुनाइयो किसी के प्रति भी एडजस्ट होने वाली अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी हाथ उठाओ एडजस्ट होने वाली सोच के हाथ उठाओ अच्छा इंग्लिश नहीं जानते सबसे मिलनसार सबसे अपने को साथी बनाने वाले निर्विघ्न तू तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं के कमी है बाप दादा सभी को कह रहे हैं कुमारियों को मददगार बनेगी ना हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी लेकिन कौन सी मददगार निर्विघ्न मददगार अभी उठाओ निर्विघ्न मददगार निर्विघ्न फिर इन एडवांस मुबारक को मुबारक को मुबारक
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप दादा अंडरलाइन कर माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना मिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों के रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसे सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले पास ना दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

che Cardeway.

मेरा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी जी के अंदर

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र अच्छा

क्या हर एक बच्चा

0: केवल फिरती द्वारा सुख शांति की करने देनी है। इसी में अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बच्चा बच्चा अपने मन को अर्थात फिरती को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन नहीं रहे, मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, व्यक्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आ जाते, इसको क्या कहेंगे कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे प्रमाण आत्मा है, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग
2: से

0: Nevada. Sivako. Shaktishali banane chahte. Vani dwara. Chalti rahi hai. Chalti rahegi. Lekin isme samay lagta hai. रिजल्ट आप सबने सुनाई अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,900,000 ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपने मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मैं चारटी की वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राजाधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होंगे, किसमें होगा, अल्प काल में होगा ना। तो क्या बाप से बाप अविनाशी और वर्षा क्या लिया अल्प काल? अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत काल कितना काल है वो नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना धोखा नहीं गए, और बहुत काल का अभी का सुख अभी की श्रेष्ठ स्थिति उससे भी वंचित हो जाते। इसलिए क्या करना है, बहुत काल करना है पीछे वाले करना है, हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा। अगर किसी के भी बुद्धि में ये से रुका। जो भी अपन ने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते। Yeah,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। कुछ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: करना चाहिए, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पर्यंत, और दूसरी बात क्या होती है, चलो वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कम है, ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, उसी रूप में नहीं आते। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है। इसीलिए मानता था। उस नजर से आपको नहीं देखी मैं, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। जो बाप दादा एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, वो मिल नहीं सके, लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कटाव है। तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कब मिलता है? कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहिए बाप दाता के भंडारी में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा का जी हाजिर, बाबा का लो दाता है, दादा भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते। साफ दिल सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा जी करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने दे। ये जरूर करो।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो आपको भी फोर्स से

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने Let's go.

Rita.

मीठी वृद्धि, मीठी दृष्टि।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Just

Sí.

दूसरे अलबेले पर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाती है। निर्णय की निशानी इसलिए दिखाती है, एकाग्र कंठा हो जाता, तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हट चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां मन को चाहो एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मांड जीवन अर्थात कोशी की जीवन कभी कभी बाप दादा देख कोई कोई की चेहरे जो होती है ना वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है।
3: मरी हुई चीज

उसे लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया की भी भौरों भी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो डराती है सिर्फ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराती है थोड़ा। डरेंगे कुछ करेंगे तो नहीं, ये तो जानबूझ के करते हैं। ऐसी माया भी अपना बनाने के लिए बहु रूप धारण करती है। जब बहु रूप धारण करती है तो आप भी बहु रूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते है ना तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो। आए माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल, सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सनेही पाप का, सनेही परिवार का, सनेही सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देख। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां गुरु उत्साह भरा हो। सुने का वायुमंडल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Snake।

Sunny. Yes. Yeah,

Chappie.

Cassandra. Cassandra के अधिकारी बन गए. Shaktiyon se.